0: special containers have been set up in nearly 150 residential communities, where residents can dispose of their old clothes separately from their household waste. Workers from various local organizations sort the clothes according to quality and material.
1: जो टैग और विदाउट टैग वाला जो टैग वाला रहता है ना वो हम लोग रीयूज में निकालते हैं और विदाउट टैग वाला मतलब जो कपड़ा अच्छा लगता है उसका कलर में कुछ डिफरेंस नहीं है कलर पे अच्छा है ज़्यादा रीयूज नहीं हुआ होगा तो हम लोग रीयूज में निकालते हैं और अपसाइकलिंग में जैसे कि डेनिम्स ट्रैक पैंट शर्ट ये सब हम लोग अपसाइकल में निकालते हैं जिससे कुछ तो प्रोडक्ट बन सकते हैं और डाउनसाइकल में जैसे कि ड्रेस रहेगा जिसमें थोड़ा सा दाग लगा हुआ या कुछ तो ऐसे ऑयल दाग ऐसे जो रहता है ना थोड़ा सा फटा हुआ तो हम लोग डाउनसाइकल में निकालते हैं।
0: The recovery facility began operations in October 2024, giving work to 80 women. They are employed by a non-profit that is a partner in the project. It was the Navi Mumbai Municipal Corporation that set up the recovery center. It remains a key sponsor.
2: कि जो भी कपड़ा वहाँ पे आएगा वो पूरा उसका सर्कुलर प्रोसेस होगा वो लीनियर प्रोसेस नहीं होगा सर्कुलर प्रोसेस की वजह से क्या हो जाएगा जो आया है वो पूरा यूज में आ जाएगा और उससे कुछ इकोनॉमी भी जनरेट हो जाएगी
0: इन द अपसाइक्लिंग डिपार्टमेंट प्रोसेस टेक्सटाइल वेस्ट इज टर्न्ड इनटू बैग्स ज्वेलरी स्टेशनरी एंड जैकेट्स ऑन द अदर हैंड स्ट्रेचेबल क्लोथ्स लाइक लेगिंग्स एंड टी शर्ट्स आर टर्न्ड इनटू टेबल रनर्स बैग्स एंड सॉफ्ट टॉयज
3: एक भी कपड़ा हम एक चिंदी भी मिस वेस्ट जाने नहीं देते हम छोटे छोटे जो क्लॉथ्स होते हैं उनको एक पोटली में भर के उसके बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं तो हम धागे से लेकर बड़े से बड़ा कपड़ा हम पूरा यहाँ पर यूज़ करते हैं यहाँ यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ कोई सी भी नहीं है
0: द रिकवरी सेंटर इज़ अ सक्सेस स्टोरी फॉर द सिटी Last year alone, 45 tons of old clothes were upcycled into new products. The recovery center can't yet process all textile waste. Low-quality fabrics from the fast fashion industry in particular are a problem. Waste management experts believe the textile industry itself should be held accountable. This is known as Extended Producer Responsibility or EPR. India already has laws governing EPR for some types of waste, but not yet for textiles. An EPR policy could also require manufacturers to take back clothes and implement recycling schemes. Sejal Sachdeva doesn't yet have a container in her neighborhood. But more are due to be added soon. It would also help if consumers wore their clothes longer and replaced them less often. But that's another story.
4: Who gets to decide what our future looks like? The people making the money, the people making the rules, the old men in power, or the younger ones who have to live in the future? The traditionalists or the experimentalists? Think and tell me. Talk to us on social media. I will see you very soon. Until then, keep vibing. Namaskar. And as the Gen Z say, bye.